मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित होई, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे थे, रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई वे सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योद्धा, मैं किड्डा वड्डा काम

मेरा मुझ में किछ नहीं। आइक सेठ तन दौलत बड़ा कोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है मेरी भी झोली भर। सतसंगियो जंग मंगियाणी दी गल है पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दातां मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया पुत्र वड्डा हो

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कढ देता है। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडिया एडिया उचिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सर वाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी शोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के।

खुश कर सकता है गुरु नानक नु खुश नहीं कर सकता। जिन्ना चिर गुरु नानक नु खुश नहीं करेगा उन्ना चिर तेरिया खुशियां कच्चिया ही रह जाएंगी, तेरिया खुशियां पक्कियां नहीं होंगी। तू गुरु नानक नु पला

क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनु न विसरै तां सहलो मरना होए। सतगुरां दे हुक्म अनुसार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलकार सिंह जी पदेशा सतगुरां ने जितनी कु सवासां रूपी आरजा तिन्हां नूं दे करके इस मात लोक ते भेजिया सी, अपनी सवासां रूपी आरजा भोग के सतगुरां दे चरणों विच जा विराजे सन। प्यार वालियो, सतगुरां दी गुरबाणी दा फरमान है, जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। इस मात लोक दे अंदर हरेक चीज़ दे दो पहलू ने। जे जीवन है तां मौत भी निश्चित है, जे दिन है तां रात भी निश्चित है। पर जिहड़ी इह मौत दा भेद है, इह केवल ते केवल सतगुरां दे कोल है। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए। जदों तीन कारण इकट्ठे हुंदे हन, समां, स्थान ते कारण, तां इंसान दी मौत हुंदी है। सो सतगुरां ने जितनी कि सवासां रूपी अरजा दे करके भेजिया सी, सरदार बलकार सिंह देशा अपनी सवासां रूपी अरजा भोग के सतगुरां दे चरणों विच जा विराजे सन। तिन्हां दे निमित्त अलाणियां दे पाठ होए, उपरंत कीर्तन होए। सो इतनी सेवा प्रवान करनी जी, दासरियां तो कीर्तन करदियां तो बेअंत तरहां दियां भुलां गलतियां हो गईयां ने। सतगुरु जी अते साध संगत बख्शन योग है, बख्श लैणा। आओ हुण सारी संगत रल के आनंद साहिब जी दी बाणी दा जाप करिए जी।

आए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए परीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देह तत्काल उधारै।

कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरी दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोहि बचाव हो सुखी बसै मोरु परिवारा सेवक सेख्य सबै करतारा मोर

रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तन कमो हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ती ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता। किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाण मिखाय मिखाई, माया मोह परम पै पुल्ले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनया गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास

अमृत वेला सचना वड्याई विचार नानक एव जानिए सब पिसचार जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे असमाई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाए तीर्थ नामा जे तिस पावा विण पाणी के नाई करी मत विच रतन जवाहर माणिक जे को गुर की सिख सुनी जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले।

0: नमो रोग रोगे नमस्तंसनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
0: नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सच्चिदानंद सर्वं प्रणसि
0: अनुपे अनुपे समस्त निवासी
1: सदासिद्धा बुद्धा वृद्धि कर्ता
0: अदो उद्धार्तं अंगं हर्ता
1: परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं
0: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं
1: अशेदिय अभेदिय नामं कामं
0: समस्तोपराधि समस्त

0: जतर ततर दिशा विचाओ फैलियो अनुराग
1: नाम काम विहीन पे कामो न जाहे
0: शर्म मांस बत मांस मानता है
1: एक मूर्धन एक दर्शन की रूप अनेक
0: खेल खेला खेल खेला अनंत को ब्रेक
1: देव देव न जाने जे वेद और देव
0: रूप रंग न जात पाछो जानिए के देव
1: तात मात न जात जग जन्मन विहीन
0: चक्कर बकर फिरे चतर चक मानिए पुरतीन
1: लोग चौदह के बिघे जग जापे जे जाप
0: देवनाथ मोरो था प्यो सबे जे था
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुर कपा।

0: के कारण को निंदा है के रोजी दहिंदा है
1: के कर्म करीब है
0: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी
0: के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे
1: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे
0: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे
0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: सर्वत्र अंता के सर्वत्र कंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पोख
1: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे
1: सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानी
0: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: सर्व कलीमे के परमक फही
0: में आकल आलामे के साहे कलामे
1: सर्व जु है द मामल रुजु है
0: हमेशा सलामे सली खुदम दामे
1: शिकस्ते गरीब परस्त
0: बरिंदुल मकाने जमीन उल जमाने
1: मामे रुजुल निदाने
0: हरि खुदा जी मेरे जाए यकीन में
1: कल तरंग है पेदे अपंग
0: अजी जो निवाज है गनी मुल्क राज है
1: स्वरूप पत्र मुक्त भूत है
0: प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
1: एवं स्वरूप है पेदी अनुप
0: समस्त पराज है सदा संसाज है
1: सलाम है सदैव लकाम है
0: निर्भास स्वरूप है अगाध है अनुप है
1: अगाध रूप है अनाद स्वरूप
0: है अनंदी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
1: सर्गं त्रिभाते है गंजे अगाधे
0: सोन सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
1: स्वरूप है जय अचूत है
0: नरकं प्रनाश है प्रचुर प्रवास है
1: प्रभा है सदैव सदा है
0: प्रभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है
1: सदा है विभुक्त प्रभा
0: अनु स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है
1: श्री शांत पंग है नंग है अपेक है लेक है
0: अपर्ण है कर्म है नाद है दुभाव है
1: अजय है अबे है अपूत है तूत है
0: अनास है उदास है अदंत है अबंद है
1: अभक्त है विरक्त है नास है प्रकाश है
0: नचिंत है सुनित है अलिख है दिख है
1: एक है अपेक है अटा है अगा है
0: असंभव

0: ब्रह्म प्रभुते
1: पातक परमाते सदा सर्वसाते
0: अगाच रूपे निर्बाध प्रभुते
1: अनामे तरभंगी त्रिकामे
0: नरभंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनुपे
1: पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
0: न ताते न माते न जाते न पाते
1: साकं सरीके मित्तो अमीके
0: सदेवं प्रभाहे
2: भगवती
3: चलो चलो
2: तय पसा की जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है
0: हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है
2: के साहिब दिमाग है के हुस्नल चराग है
0: के कामल करीम है के राजक रहीम है
2: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
0: करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है
2: गनीमुल खैराज है गरीबुल निवास है
0: हरीफुल शिकान है रियासल फिकान है
2: लंकन परनास है समस्तुल निवास है
0: गंजुल कनीम है रजायक रहीम है
2: समस्तुल जुबा है के साहिब किरान है
0: के नरकन परनास है बस्तुल निवास है
2: के सरबुल गवन है हमें सुल रवान है
0: तमामुल तमीज है मस्तुल अजीज है
2: परम परम ईस है समस्तुल अजीज है
0: अदेशुल अलेखा मेशुल अपेख है
2: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है
0: करीमुल कमार है के जुर्रा जमाल है
2: अचलन प्रकाश है के अमितो सुबास
0: है अजब स्वरूप है के अमतो प्रभुत है
2: अमितो पसा है की आत्म प्रभा
0: है अचलन अनंग है के अमतो अपंग है
2: मधुपर चंत्र प्रसाद मुनमन पर नाम गुण गन मुदाम
0: हर भर गंज हर नर पर पांजो
2: अनगन पर नाम मुन मन सला
0: हर नर अखंड पर नर अमंड
2: अनपव अनाज मुन मन प्रकाश
0: गुण गण पर नाम जल थल मुदाम
2: अंशिज अंग आसन अपांग
0: उपमा अपार गत में तो दार
2: जल थल अमंड दिस्विस अपांड
0: जल थल महांत दिस्विस बेअंत
2: अनपव अनाज ते तर तुरा
0: आजान बाहु एक के सुदाहु
2: ओंकार आद कथनी अनाज
0: थल खंड ख्याल गुर भर अकाल
2: कर पर नाम चित चरण नाम
0: अंशिज गाता चित न बात
2: अंजज गात अनरंज बात
0: अंटुंड पनार अंडठ पर
2: अडीठ तरम अत डीठ करम
0: अनवर्ण अंक दाता महंत
2: हर बोल मना चंत्र प्रसाद करुणालय है अर काल्य है
0: थल खंडन है मैं मंडन है
2: जगदीश्वर है परमेश्वर है
0: थल कान है सर्वभारण है
2: त्रित के तन है जग के कर्ण
0: मन मान्या है जग जान्या है
2: सर्वन पर है सर्वन कर है
0: सर्वाचा है सर्वनाचा है
2: करुणाकर है बेसंबर है
0: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
2: ब्रह्मंडस है कल खंडस है
0: परते पर है गुणा कर है
2: जपा जपे थपा थप
0: अक्ता कृत अमृत अमृत है
2: अमृता अमृत है करुणा कृत है
0: अक्ता कृत तरणी कृत
2: है अमितेश्वर है परमेश्वर है
0: अक्ता कृत है अमृता अमृत है
2: अजबा कृत है अमृता अमृत है
0: निर्णायक है खलकायक है
2: दिसंबर है करुणालय है
0: निर्णायक है सर्पायक है
2: पंजन है अर्गंजन है
0: वृत्तापन है जप जापन है
2: अकलन कृत है सर्वा कृत है
0: कर्ता कर है अर्ता हर है
2: परमात्म है सर्वा
0: आत्म वास जस के जस
2: जंग प्रयात चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
0: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
2: नमो अंधकार नमो तेज तेज
0: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
2: नमो राजन तमसन सात रूपे
0: नमो परम तंग अतंग स्वरूपे
2: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने
2: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो पोज पोजे नमो पान पाने
2: नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे
0: नमो इंद्र इंद्र अनादं प्रभुते
2: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
0: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
2: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
0: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
2: अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
0: अबू अजू अनास कास
2: अगंज अपंज अलख अपख
0: अकाल दयाल अलेख पेख
2: नाम अकाम अगा अडा
0: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
2: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
0: अकर्मा अपर्मा अगंजे अलेखे
2: प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
0: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
2: कामन पे पूते समस्तुल स्वरूपे
0: कर्म परनासी सुतर्म पभूते
2: सदा सच दरनन सत्रन परनासी
0: करीमल को निंदा समस्तुल निवासी
2: अजायब भूते गजायब गनी में
0: हरियम करियम करीमुल रहीम में

0: देवन इंद निशाचर पूत पवेक पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब ताप कपेंगे
0: पुन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के बो पुंज कपेंगे
1: सास मुह पर सन फिरे जग सतर सबे अवलोक जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नराष्ट्र पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजात एक दान अनेक स्वयंबर साज बेरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम

0: छानिज करते करिया सब बैरन को आज सगरिया
1: पूरन होए हमारी आशा तो बचन की रहे प्यासा
0: तुम्हें शार को ये बनाते आओ जो बचाओ सो तुम ते पाओ
1: सेवत सिख हमारे तारिये चिन चिन सतर हमारे मारिये
0: आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नरिये
1: पूजो सदा हमारे पच्चा श्री अस जु करी उरचा
0: राख ले मोय राखन हारे साहिब संसाए

0: संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी,
1: एक एक की पीर पछाने, खट खट के पट पट की जाने।
0: जब कर करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा,
1: जब आ करत करत हो कबू, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ।
0: जेते बदन से

0: पापनी बुध है जेती पणत पिन पिन तो तेती
1: तुम्हारा लता न जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा
0: एक है रूप अनूप स्वरूप पारंग पे और आपकी पुपा
1: अंधे चेतक से तजकीनी उत्पुछ खान बहु रस्तीनी
0: को फूल राजा है बैठा को सिमट पे सम के रे गैठा
1: सगरी सृष्टि खाए चंबवार चुगार सरू से
0: अंबो अब रचा मेरी तुम करो सिखो बाण सिख सुंगरो
1: दुष्टे उठ पाता सकल मलेश करो रण गाता
0: जे सुजतव सरनी परे तिनके दुष्ट के तो अमर है
1: पुरक चवन पक परे ते हारे तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कल को एक बार ते आए है जाके
1: के काल
0: निकट नहीं आए है
1: अच्छा होए ता है सब काला दुष्ट अरेश करे तत्काला
0: कृपा दिस्तन जाए न हरो ताके ताप तिलक मोरे हो
1: देद सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट चार चल सके न कोई
0: एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फास्ते ताए उबारा
1: चिंदन नाम तिहारो कहा रहा
0: खड़े केत में शरण तिहारी आ पा दे लो बारी
1: सरप ठोर मो हो सहाय दुष्ट दोखते ले हो बचाई
0: कृपा करियम पर जग माता करंत करा पूर्ण सुबराता
1: किल्विक सकल ने को हरता दुष्ट दोखिन को शय करता
0: श्री असुच पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला
1: मन बा छल पर पावे सोई
0: सुने गुंग जो आश्रस ना पावे सुने मूर्छित लाय चतुरता आवे
1: दुख दर्द भौ निकट न ते नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई
0: संबत 17 सहस

0: राम क्लीम लदी जानंद एकुं का सतगुरु प्रसाद अनंत पिय मिनिमा ए सतगुरु में पाया
1: सतगुरु ते पाया सहज से तीन मन वजिया माताया
0: आत्म भव प्रिय शब्द गाविनाया
1: सतोत गावो हरि के राम मन जिनि बसाया
0: नानक नंद हुआ सतगुरु में पाया
1: ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले
0: रूतन मन मेरे दुख सब सन्ना
1: अंगीकार ओ करे तेरा कार सब सवारना
0: गला स्वामी स्वामी सुखी मन सारे
1: कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
0: साचे साहिब ज्ञान आई कर तेरे
1: भक्त तेरे सब की छे जिसे हे सो पावे
0: सस रात्रि नाम मन वसावे
1: नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गनेरे
0: नानक सच्चे साहिब ज्ञान आई कर तेरे
1: साचा नाम मेरा आधार
0: साच नाम आधार बिन जब पुकार सब गुवाया
1: कर शान सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाया
0: भगवान की तगुरती और जिस तेरे विद्याया
1: कहे नानक सुनो संतो सबद धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार
0: वाजे पंच सबद कर सुभागे कर सुभागे सब वाजे गला चित का तारिया
1: पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया
0: परम पाए दुज जिन सो नाम हर के लागे
1: कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे
0: साची लिवे बिन देन मानी देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया
1: तुद बात समृत को नाही कृपा कर बनवारिया
0: एस नो होर थाउ नाही सबद लाग सवारिया
1: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया
0: आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जाने
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
1: अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका सबद सच्चे सवारिया

0: गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाए
1: आप सार सदा है परने गुर बिन अवर न जाने कोई
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुर ते वे मुख होए बिन सतगुर मुकत न पावे
0: पावे मुकत न होत है कोई पूछो विवेक क्या जाए
1: अनेक जूनी परमावे बिन सतगुर मुकत न पाए
0: फिर मुकत पाए लाख चरणी सतगुरु सबद सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुकत न पाए
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी
1: बाणी दा गावो गुरु तेरी बाणियां सिर बाणी
0: जिनको नदर करम हो वह हृदय दिना समानी
1: पीवो अमृत सदा रहो हर रंग छपे सारंग पानी
0: कहे नानक सदा गाव हो ए सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आग बाणी
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी
1: जिस जिन गाहे लिया माया बोलन पैर बाणी
0: कहे नानक सतगुरु बाजो

0: सिर्फ सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए
1: हुकम वर्ताए आपे कह गुरमुख जे बुझाए
0: तोड़े बंधन होवे मुकत सबद मन वसाए
1: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सो लिवलाए
0: कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए
1: सिमरन।

0: हर रास मेरी मन वणचारा, हर रास मेरी मन वणचारा, सतगुर ते रास जानी।
1: हरे नित जपियो जियो लाहा खटियो दिहाड़ी,
0: एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा,
1: कहे नानक रास मेरी मन हुआ वणचारा।
0: ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए,
1: प्यास न जाए होत कीते जिच रस पले न पाए।
0: हर रस पाए पले पिए, हर रस बहुन तृष्णा लागे आए,
1: रस करमी पाई है सतगुर मिले जिसे आए।
0: नानक होर अनरस सब बिसरे, जा हर वसे मन आए।

तुम मात पिता हम बारिक तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊँचे ते ऊँचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की

krudí. Dandaut vandane ankvar sarvakala samrath dolan te rakho prabhu नानक दे कर हाथ दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा ए बिनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम करे अपने चेरे सुनो बिनो प्रभ मेरे मिता चरण

सिर नहीं पूरन गुणतास, धन वह करो सतनाम श्री वाहिगुरु बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां

निकट वस देख सब सोई, गुरमुख विरला बुझै कोई। निकट वस देख सब सोई, गुरमुख विरला बुझै कोई। विण पै पया